0: हरेक शुक्रबार विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा गर्भवती जाँच गर्न प्रभास मेडिकल चैनपुर छ 0 पोइन्ट।
1: पुरानो ग्यास्ट्रिक अल्सर, हर्सा, दिशाबाट रगत बग्ने, छाला सम्बन्धी रोग, चर्म रोग, चिनी रोग।

0: आज तो मजा ही आ गया। ये देख आईफोन 16 प्रो मैक्स पूरे 2 लाख का।
1: 2 लाख?
0: इसमें क्या खास बात है? खास बात देखो, हे सिरी प्ले सॉन्ग हनी सिंह।
1: ये है 10,000 का एंड्रॉइड फोन, अब तुम इसका पावर देखो।
0: ओके गूगल, किसी का भी गाना नहीं बजाइए। देखो नहीं ना बज रहा है? नहीं ना बज रहा भाई?
2: नहीं बज रहा
0: बेटा।
3: अभी बज जाता है भाई।
0: हे सिरी, हमको थार रॉक्स का फोटो चाहिए।
1: ये देख, अब मेरा देखो।
0: ओके गूगल, हमको फोटो नहीं, पूरा थार रॉक्स ही चाहिए।

0: भैले बुझी बुझी बुझी ऊ देखाओ के अरे चक्का चक्का चक्का
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाबरे बाबी स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू जारी भी क्या लिखवा ले का अरे अरे ए ए
1: और जिगर पलट